0: সেই ডালমা হলা দানা হাল দেও নানি চুরি খেলা জিতে রুবা স্টোর বাট দানা নিয়ে আও তো
1: हजुर यदि तपाई पनि पशु पक्षी वा माछाको लागि सर्वोत्कृष्ट दानाको खोजीमा हुनुहुन्छ भने हामीलाई सम्झनुहोस्। हामी कहाँ ग्लोबल फिडका सबै खाले उत्कृष्ट दाना सुपथ मूल्यमा उपलब्ध रहेको छ। साथै बोइलर लेट वा गिरिराज चल्ला पाल्न चाहेमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। प्रोप्राइटर रूपा गुरुङ, मोबाइल नम्बर 9847 50571 र 9855 24171। रूपा स्टोर्स, रोल्पा नगरपालिका 4, लिबाङ, चुडिखेल, रोल्पा।

0: मेलाडी माइलका लागि त सुनसरी गाउँपालिका अनि मस्तक जरुरी सूचना झुनु तेला खिमरिदे गरम ओबरी जेउ तेला सुनो भोली कटास ओचेलुरी जेउ आउ तेला क वन जंगल ल घे लागिने मस्तक सम्भावना चाहिए आउ ये जिमी प्राकृतिक सम्पदा र सक्षेप्त ज सक्षम नाभे वातावरण मिले नेला झ्यापा असर किने रि उमूल र थाउने भुछे ताने वायुमण्डल ल कार्बन मस्तक तानाले पनि जलवायु परिवर्तन ल असर सक्यने सुनो नखर नामले ल घे लागिने सज जिमी किने लापरवाही सुनो चाउसो खेल गेमा देखो जिन्दगी को ठेल मेला की नाटी जन धनी ने खेपा छेती ताऊ हो खोकाई
1: देखे छानियाला बल्ल मेला की पूरा रंगे नौ पूरा ले चौसे खेल गिरी
0: बम जम सज मेरा आई हुई बानी ए मेल ए मेरो सथाने लाली उसो कर पोतर राले पार जगे रहते
1: सलाई लाइटर श्याला ले सचांगने चीज राले जबांग जार यामा देने पोल जेने या इतो चीज रही थी बम जम लिया लग गया बाया
0: पिकनिक बम बस बात तो मैं सचांग सो चिन्नी मेले चाव सो सही जगे खिलाये बम जम वाले उसो छानी तो इतने बारी को चुरोड विधि ओरे बने कुबाजम के माचे
1: नंथर नमलो लीजो बम उपभोक्ता समूह राय सामुदायिक बने होने ढालने से अनुरोमन दिने व्यवस्था चाव सो गिरी है
0: गेस वो छाने ला खोले ला चाव सी कोडिये हो दी दे करीम का गेस अन्य के लाइजो आप वो नजरे बने गेम ये लो गेस अन्य के नालाये और लिम नये के नालिये
1: बम जंगल से जुड़ी सी गेम बारी लो बाली नाली कुचुला चुली यात्रा में सतांग सो चुनी ने चाव सो सही के खेले हैं
0: बम जंगल अन्य ला जुगे नाइये नियोला जिकी ने पार से ना करना नारे मिली दे बने साना जो नहीं गेस रहे
1: बतास उचुली जु बेला तो विजिम के कोटल ने के सतांग के ने हेन ओके मत चुनी ने चाव सो गेस रहे
0: नियोला जिने निताई गे मने गे बचिए सुनो और ले मने गे बचिया
1: गेस वो छामला पोया लो नियोला जिने किसन के ने गेस वो का उड़ा कारे ले परहरी कारे ले सुनसरी गाँव पालिका गाँव कार्य पालिका उन्हीं कार्यालय ल खबर गिरी है
0: अनुरोध सुनसरी गाँव पालिका वन वातावरण सजग विपद व्यवस्थापन समिति कोबाङ रोल्पा